0: अब जाए के घर के दीवार लिपोती के उड़ाए लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के दीवार लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: उड़ाए लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: होते अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे, अम्मा हमें सांप दस लीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दस लीस बिटिया?
2: यही दही है हाथ में, दस लीस अम्मा।
1: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमरे मुस्कान बिटिया का सांप दस लीस, अरे क्यों है क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप दस लीस की काओ।
3: ना घबराओ जाए काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: वो तो है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के सूर्या खोल दिया जाए, दस लिया ओकर हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और सांप दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, सांप दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियो नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो जहर मोहरा लाई के सपवा डसी लिए जगह पर लगाई दे तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दे जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरिन के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम पे के देखे करा। हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरिन के गाँव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कर जाते है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए, मिला तो मुस्कान का बताए सका जाता है।
1: जी हो थे बाबू, चलो
4: याद रखा जाए, सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रहे के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है लेकिन वो डस सकत है, संभव होए तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप दस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है, और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप दस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे के मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मित्रहरूका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: निकलियो है जो कामे न लगने देश दुईटा में बनाए थे एवटा बंकर में लुक्न बनाए थे इजरायल अर्क श्रीलंका से खासे नेपाल को बनाए
1: थे
0: तो संविधान में ग्यारेन्टी कर हम हम डेमोक्रेसी तो इन्क्लूसिव डेमोक्रेसी हमी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को पक्ष में सहभागितामूलक लोकतंत्र को पक्ष में छू प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को पक्ष में छह अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सहभागितामूलक लोकतंत्र को पक्ष में छू प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र सहजना में एकजना राखे तो प्रतिनिधि हो सहजना में तेतीजना राखे मधेशी को सहभागितामूलक हो
1: यहां बड़ आक पदयात्रा
0: मधेशी मात्र होना जनजाति को दलित को महिला को तब मधेशी को सोच मधेशी ये सहभागितामूलक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बाटो में हिड़न पर्च सुशासन और समृद्धि को बाटो में हिड़न पर्च और जनता को सुन्न पर्च अम नेपाल बने देखि नेता को जनता ने सुनी रहे थी इस पाली में जनता को सुनने शुरूआत करते सामान पाइला मात्र
1: कार्यान्वयन तह में तो फिर सरकार होगा सरकार
0: सरकार में सुनाऊ सरकार ने जनता को बीच में जनता में गए सरकार और जनता को बीच में ब्रिज को सेतु को काम कर दी सरकार फुर्सत छैन राजकाज चलाउनु भन्दा हामीले त फुर्सत छ हामी जनता में जान्छु सुन्छु आएर सरकार भन्छु अनि भेटेर पनि भन्छु संसद में भन्छु तपाईहरुको संचार माध्यम बाट पनि भन्छु चुनाव का तरीका तीनटै छ म जनता को प्रतिनिधि संसद सदस्य छु त्यस कारणले संसद में भी भन्छु त्यस माध्यम बाट सरकार सुन्छ
1: अब यो
0: भेटे सरकार को प्रतिनिधि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री हुन्छ मंत्री हुन्छ त्यसलाई भेटेर भन्छु न भए संचार माध्यम तपाईहरु जस्तो भेटेर भन्छु
1: सरकारले सुनेन भने सार्वजनिक रूप में सार्वजनिक गर्दिनु हुन्छ यहाँले
0: मैले मेरो थिम कुरा पनि भने पहिलो चोटि नेपाली जनतालाई सुन्ने अहिलेसम्म नेता सुनाउँदा आएछ म जनता सुन्न गइरहेछ म आफू बोल्दैन शिक्षा पर धेरै प्रश्न भने एक दुईटा कुरा बोल्छु तर म सुन्ने हो पाँच घंटा हिड़ने सात घंटा सुन्ने त्यो पनि आदि हिसाब राख
1: अनि अर्को चाहिँ गंगा सागर बाट गाग्रो में माटो अनि पानी बोकेर फेरि
0: गंगा सागर नेतिक गंगा सागर में के हुन्छ भने छठ को बिहान को अर्घ दिन गंगा सागर बाट राइजिंग सन को पूजा हुन्छ छठ में म नेपाललाई राइजिंग सन को रूप में देख्न चाहन्छु उदाउँदो सूर्य को रूप में देख्न चाहन्छु विश्व को इकोनोमी में उदाउँदो सूर्य को रूप में नेपाल को इकोनोमी देख्न चाहन्छु सुशासन में उदाउँदो सूर्य को रूप में देख्न चाहन्छु अस्ताउँदो होइन उदाउँदो त्यस कारणले गंगा सागर को छठ में पूजा गर्छु माटो र पानी बालू मैं मेची को मिलाकर महाकाली में मिलाऊ कि हम देश को अखंडता अक्षुण्ण रहोस हम समाज सौहार्द रहने अक्षुण रहोस हम देश में कुछ किसिम को धार्मिक सामाजिक भौगोलिक जातीय वर्गीय द्वंद्व न होस या दलीय राजनीति द्वंद्व न हो शांति को पक्ष धरो विकास को पक्ष धरो सुशासन और समृद्धि को पक्ष धरो किसिम को विखंडन कुछ किसिम को द्वंद को पक्ष धर्म हो
1: थीम बोकर हिड़न भाषा तर सरकार को असंतुष्टि यहां महाकाली पदयात्रा करने घोषणा कर
0: तपाई को बुझाई होगा नहीं सरकार क्या असंतुष्टि
1: सरकार
0: असंतुष्टि के मैं बताइए ना कुछ असंतुष्टि जनता को पक्ष में बोलना नपाने किसान से मधेश भक्त अंधभक्त होने किसान से इसमें
1: प्रश्न उठाई में विरोध मानदेन
0: जैसे सरकार को डिफेंड करने काम सरकार ने प्रवक्ता रखा मैं सरकार प्रवक्ता तो होने मत जनता पता मनपति हो कि सरकार मैं बताऊ जनपति में जनता प्रवक्ता जनता को क्रो उठाऊ सरकार प्रवक्ता डिफेंड कर सरकार ने प्रवक्ता नहीं सीखा उसे कर
1: सरकार ने आपको क्रा भन्नलाई प्रवक्ता राख
0: आखिर ते प्रवक्ता को तो चल बताइ गाड़ी चल रहा झंडा पाए ड्राइवर पाए सिक्युरिटी पाए हमें तो संसद जनता ने बनाए हमें तो जनता कुरा तो मैं लिखा तो कहीं राखदी तपाई राख तब सुंदन मखने हुईन राखने कहीं
1: मेची महाकाली पदयात्रा में मैं सुन्न छुटा
0: मेची महाकाली को संपूर्ण नेपाली मेरे लिए महान मेची महाकाली पदयात्रा बुलाकी में पची गर्मी आए पी मैं पहाड़ी लोकमार्ग में हिड़े गाड़ी में होने कुछ रथ यात्रा होने कुछ लामकाप करने होने जनता को बीच में जाने जनता को कुरा सुनने दस्तावेजीकरण करने धारणा बनाने
2: जनता जानना चाहन्छन् जनता जानना चाहन्छन् का साथ में ग्लोबल आईएमई बैंक सबैका लागि बैंक दिस होम इंटरनेट
3: अवस्था यसका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1 नेपाली नेटवर्क .com र ठाउँ ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाली खबर अहिलेलाई यति नै भोलि बिहान 5:30 बजे पुनः उपस्थित हुने नै छौं आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार
4: शांति र विकास को आधार सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz
5: खुशीको खबर विगत 4 दशक देखि बुटवल में निरंतर सेवा दिदै आइरहेको आले डेन्टल अब कपिलवस्तु को 4 नंबर जितपुर में यही श्रावण 4 गते देखि शुभारंभ भई संचालन में आइरहेको छ
4: शुभारंभ को अवसर में विशेष छूट थप जानकारी का लागि आले डेन्टल बाढगंगा 1 जितपुर कपिलवस्तु एभरेस्ट बैंक नजिक
6: यो बाइक बिग्रेर हैरानै पार्यो जति बेला इमर्जेन्सी पर्छ

0: अब जाय के घर के देवाल लिपोती के उराय लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म भवा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाय के रहा।
0: उराय लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बनाए के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: हो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दे थे।
2: अरे बापा रे, अम्मा हमें साफ दस लीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दस लीस बिटिया?
2: यही दही हाथ में दस लीस अम्मा।
1: अरे अरे, क्यों क्यों? अरे है क्यों? हमरे मुस्कान बिटिया का साफ दस लीस। अरे क्यों है, क्यों है?
3: अरे कहा हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का साफ दस लीस की काओ।
3: ना घबराओ जय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
2: वो ते
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से और हाथ के सूर्या खोल दिया जाए, दस लिया ओकर हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और साफ दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, साफ दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो गहर मोहरा लाई के कपड़ा डस लिए जगह पर लगाई गई तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोहरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी, बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरे के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम स्नेक बाइट नेपाल .org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ, डाटा हम पे के देखित करा। हाँ देव, स्नेक बाइट नेपाल .org वेबसाइट खुली गवा। हमरे के गांव से तो गुरु सिंह सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आई गए।
3: काकी, हम मुस्कान का न हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाए, मिला तो मुस्कान का बताए सका जाता है।
1: जी वो थे बाबू, चलो।
4: याद रखा जाए, साफ दस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कोनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जाता है, लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप दस लिए व्यक्ति का बचाए सका जात है, और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप दस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे के मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्सरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: तरकारी बालीमा पकेट विकास कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना। बाणगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुबाट आर्थिक वर्ष 2083-84 संघीय सरकार सशर्त अनुदान तर्फको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी बालीमा पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने यस नगरपालिका अन्तर्गतका कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, समिति तथा कृषि फर्महरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 30 दिन, मिति 2083-06/9 भित्र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअलको अनुसूची 6 अनुसारको आवेदन तथा अनुसूची 7 अनुसारको आधारभूत तथ्याङ्क फारम भरी नगरपालिकामा निवेदन पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। पकेट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड तरकारी बाली न्यूनतम 20 हेक्टर क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ।
8: निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू कृषक समूह, कृषि सहकारी समिति, कृषि फर्म मिति 2083 श्रावण मसान्तसम्म दर्ता भएको दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, नियम अनुसार नवीकरण सूचीकृत भएको कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान जग्गाको लालपूर्जाको प्रतिलिपि, भाडाको जग्गा भए कम्तीमा 5 वर्षको सम्झौता पत्र, कृषक समूह, कृषि सहकारी समिति, कृषि फर्मको पकेट मागको निर्णयको प्रतिलिपि, ओडा कार्यालयको सिफारिस पत्र, कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, अध्यक्ष प्रोप्राइटरको नागरिकता वा परिचय खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, अनुसूची 6 अनुसारको निवेदन तथा अनुसूची 7 अनुसारको विवरण।
7: पुनश्च राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन म्यानुअल यस नगरपालिकाको वेबसाइट www.bargangamunicipalitygovernment.np बाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि बाणगंगा नगरपालिका कृषि विकास शाखा कपिलवस्तुमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98413-52747, 98857-62979। अनुरोधक बाणगंगा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि विकास शाखा बाणगंगा कपिलवस्तु।
9: विश्व रेबिज दिवसको अवसरमा रेबिज सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। यही असोज 12 गते परेको विश्व रेबिज दिवसको अवसरमा रेबिज सप्ताह कार्यक्रम यस बाणगंगा नगरपालिका भित्रका घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर बिरालोहरूमा तपसिल अनुसारको मिति, समय र स्थानमा निशुल्क रेबिज रोग विरूद्धको खोप लगाइने हुँदा आफूले पालेका तथा आफ्नो समुदाय वरपर रहेका सामुदायिक कुकुर बिरालोहरूलाई आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा तोकिएको समयमा सम्पर्क गरी खोप लगाई रेबिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु हुन यस्तै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ। खोप लगाइने ओडा, स्थान र मिति। ओडा नम्बर 6 बैदौली असोज 8 गते, ओडा नम्बर 9 भलवाड ओडा कार्यालयको भवन यही असोज 9 गते, ओडा नम्बर 7 घेरुवा बनगाई असोज 10 गते, ओडा नम्बर 10 मेसकुरी असोज 11 गते, ओडा नम्बर 11 ओदारी असोज 12 गते, ओडा नम्बर 4 गजेअडा असोज 13 गते, बाणगंगा नगरपालिका पशु सेवा शाखा असोज 14 गते। आफ्नो तथा छिमेकमा रहेका कुकुर बिरालोलाई रेबिज विरूद्ध खोप लगाई रेबिज मुक्त समाज निर्माण गरौं। अनुरोधक बाणगंगा नगरपालिका पशु सेवा शाखा बाणगंगा कपिलवस्तु।